सुनो शारदा 90.8 FM। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: ओशो, जिनका चंद्र मोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझा ना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े। और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते, उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय, उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित, हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए, उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था। इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे, उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी, उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी, वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी, वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है, वो नाता बौद्धिक नहीं। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर मैं कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है, हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उसे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिसलिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न न उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हाँ, कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है, इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है, जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा, फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल न खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से, जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए, सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा उसने तुम्हें डवाडोल किया, तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है, जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती। छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं, वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है, वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो। तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है। प्रश्न विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं, जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है, पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का, जिससे जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिससे जी भरे ही ना वही प्रेम है, भर भर के ना भरे। बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पांव की अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा, प्रेम के सामने समय छोटा है। समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीते, और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो, पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है, आया नहीं गया नहीं। और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं, कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे कम रहे कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती, जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है। और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम न बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना, क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां तुम्हें मैं प्यास ही सिखा रहा हूं, यहां तुम्हें मैं इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि तुम अनंत प्यास के मालिक हो जाओ। भरने की जल्दी थोड़ा सोचो, साधारण प्यास को आदमी मिटा लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित है, परमात्मा की प्यास को मिटा थोड़ी लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित थोड़ी है। इसलिए नारद कहते हैं विरहा आसक्ति, विरह में भी आसक्ति हो जाती, रस आने लगता है प्यास में भी। अगर तुम ठीक से समझो तो ऐसा कहने दो मुझे कि प्यास के कारण थोड़ी भक्त परमात्मा को मांगता है, परमात्मा को मांगता है ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं। तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया, जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई। अभी तुम उबे नहीं, बुद्धि जल्दी उब जाती है। बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं। शोरगुल बहुत है जैसा उथली नदियों में होता है, हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। शुभ है, सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही, जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है। तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं कौन किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे सुनने को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, परमात्मा के खिलाफ कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे। मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे, तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है, मौलवी है, दार्शनिक है, विचारक है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत, धर्म तो दिल की मौत है, यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद, और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं, यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं। यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए, अहंकार कैसे डूब जाए, बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं, जिससे हो जाए चलेगा। चिकित्सा से मेरा मोह नहीं, इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं, चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं, वो होम्योपैथ, होम्योपैथी के दीवाने, एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी, कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता, मगर इनकी जिद है। और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है, यह भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है, नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं है, सिद्धांत कुछ है। जो नेचुरोपैथी के दीवाने, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मर गई, नेचुरोपैथी में पूरे समय में मौजूद था जब ये घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो, उपवास, वो कमजोर बीमार, उसको वो उपवास करवा रहे। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए, टॉक्सिक, उनको निकालना पड़ेगा, उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत, पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति, वो पीली पड़ रही, वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु सन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते, उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है। और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा, इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही, उनको समझाना मुश्किल था। फिर पत्नी पागल भी हुई मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा मिलने को तैयार हूं तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त है। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार? नहीं, बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो, भी गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्मपद से ही चलो, धम्मपद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना। जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसू का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां, लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, अंगुलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसी की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ, तो स्वभावतः वो उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी, हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसी की उंगली लाओसी की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं, चांद की तरफ, उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी, अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता है। उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रही हों। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं, कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली। फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं। वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है। एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में, जो भी रंगीन मिला। माँ बाप कहे चले जाते हैं कि फेंको, बोझ हुआ जा रहा है, ये घर ले जाके क्या करोगे। बच्चा छोड़ता भी है तो भी आंख में आंसू आ जाते। ये जो बड़े बूढ़े हैं इनको अगर हीरे जवाहरात होते तो ये भी भर लेते। अभी इनको ये पता ही नहीं रहा, ये भूल ही गए भाषा कि इस बच्चे को अभी कंकड़ पत्थरों में भी हीरे दिखाई पड़ते हैं। अभी हर रंगीन पत्थर कोहिनूर है, अभी इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, अभी साफ है। अभी इसे सीपी शंख में खजाने दिखाई पड़ते, अभी इसकी बुद्धि मंद नहीं हुई, अभी प्रतिभा ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं, छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना, अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है। शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता। फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में ना हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है। विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को, जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी। तुम उससे बेचैन मत होना, उनके लिए ये वक्तव्य स्वाभाविक है। बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए, इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है, सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना, स्वाभाविक है। वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या। वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए हो। तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए हैं और पहले से ज्यादा मजे में हो गए हैं, मगर पागल हो गए हैं ये सच है। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से, वे भी चाहते हैं कि छूट निकले, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले, वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना। तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं, उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में, हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे राजी हो जाओ तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है, मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते हैं, विचार का कोई भरोसा, विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। मन तो मौसम सा चंचल है। मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे तो ज्यादा देर चलना ना होगा, ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी, रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया, मिले थोड़ी दूर को साथ चल लिए, फिर बिछुड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं। जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं, फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे, फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म। सांस तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस सास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती, वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है। आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया, विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से, हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा, बुद्ध ने कहा, सुभूति ठीक कहता है आनंद। आनंद ने कहा, मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? बुद्ध ने कहा, तू ज्यादा सोच विचार करता है, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे न जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
0: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था Why do complications arise in human life? मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? आशा करता हूँ इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम। तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप media में career बनाना चाहते हैं तो join कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये course offer करता है Bachelor's and Master's degree in Journalism and Mass Communication, specially designed for film, television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. सुनो.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है। तो चलिए मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता। मेरे साथ जुड़ रही है मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 का खिताब आपको मिला है और इंप्रेस यूनिवर्स 2018 और उसके बाद 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब आपको मिला है और आप पेशे से डॉक्टर चेतना अग्रवाल नाम है मैम का। और तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।
0: कैसे हैं और कैसा फील कर रहे स्टूडियो में आकर?
1: ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है ये और बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल।
0: मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत रही पेशे से? आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आपके आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
1: देखिए, ताज हमने हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
0: जी,
1: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था। हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके। तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ। पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया। और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 जो कि उदयपुर में हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
0: जी।
1: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में। और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
0: खिताब
1: है बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में ग्वांगजू में
0: जी।
1: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019 और वहां पे मिसेस काइंडनेस का सबटाइटल भी मिला था।
0: ग्रेट ग्रेट। घर से कितना आपको सपोर्ट मिला?
1: घर से पूरा सपोर्ट मिला है इसमें।
0: अच्छा, तो ये जो शुरुआत रही है, यूं कहें कि बचपन से आपके दिल दिमाग में रहा है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है।
1: फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है तो वो कहीं ना कहीं अंदर था।
0: ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड डॉक्टर चेतना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी और भी कुछ खास आना बाकी है, आप कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018 में एम्प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है और वहीं 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश। पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओह ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है, कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है, तो काफी इसमें
0: मेहनत है।
1: बहुत मेहनत लगती है और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है। जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, ये जो तैयारी है ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
1: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे। पर कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंट प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
0: ग्रेट, सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
1: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
0: ओह ग्रेट,
1: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमें ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
0: ओके, डॉक्टर जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक बात होती ही होती है, तो इस मामले में या यूं कहें कि खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है।
1: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं। वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, आप जिस लैंग्वेज में कम्फर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
0: जी जी,
1: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
0: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
1: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है हालांकि, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
0: क्या बात है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स को सुनाना। जाना चाहती हूँ।
1: ए दिल है मुश्किल,
0: क्या बात है। सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: है दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं, आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है

0: किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है, और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है.
0: Excellent.
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं.
0: वेरी गुड. यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं. बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए, और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा. आप कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं एक बोलना
0: चाहूंगी. प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज.
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू. यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं.
0: क्या बात है. इस बात को यूं कह सकते हैं, जब भी मिले मौका मार दो चौका. बहुत खूब, बहुत खूब. और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा. ये जरूरी है कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए. आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी. कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, उसके आप विनर भी रही हैं. एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बन के भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैजेंट्स में. तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रादर देन की फिजिकल ब्यूटी या कैसे वो बोल कैसे रहे हैं. ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को. तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं.
0: वेरी गुड. मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं, इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है. फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पस से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ. और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कि कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं, जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं, एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं, और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट. और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी. तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ. और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वर्धा. और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं, ISA आर्ट एंड लिटरेरी क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ.
0: ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारी उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का?
1: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का, ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली.
0: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ, और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब है, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा. सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
1: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस,
1: इतना कंफर्टेबल फील करके करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो बातें हैं वो खुलकर बात कर पाए।
1: बिल्कुल।
0: और आप जब जज होते हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो डॉक्टर आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो लिसनर्स सुनते रहिए। थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। एक्शन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशादा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, और किस तरीके से उसका जो दर्द है एक मरीज का वो फुर्र हो जाता है, दूर हो जाता है।
1: सर ये तो अभी तो मुझे लगता है हम अंदर से इतना ज्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं और ब्लेस्ड हैं, इसीलिए हर समय हम खुश रहते हैं बेसिकली।
0: okay.
1: और हर मोमेंट को जीते हैं।
0: रियली नाइस, रियली नाइस। तो आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ से है, और किस तरीके से आपने अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार किया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आई हैं शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में?
1: सर बेसिकली नेटिव मेरा है वाराणसी, बट क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है
0: जी।
1: स्कूलिंग, एजुकेशन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग सब वहीं से होने के बाद यहाँ शादी हुई मेरी, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला, मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन
0: करती हूँ। कुमार को फॉलो करती है आप। ग्रेट, गुड जॉब डॉक्टर जी।
1: और मेडिटेशन करती हूँ डेली, और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पॉप फटने से पहले आप जग जाते हैं, लेकिन आप सोते कितने बजे?
1: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती हूँ। जी जी जी। और मैंने अपनी बेटी को भी इतना ही डिसिप्लिन रखा है, लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
0: माँ पर नहीं है।
1: सर अगर ऐसा नहीं करे तो मॉर्निंग 4 o'clock नहीं हो पाता।
0: डॉक्टर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आपको बैलेंस किया कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं, खटिया नहीं होगा सॉरी, बैग छोड़ देते होंगे आप तो।
1: जी हाँ।
0: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
1: सर ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है, लोगों से नहीं हो पाता है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ, ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे, तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
0: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं जो जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बना कर रखें, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए।
1: सर मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी, आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाई जा रही है, वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया है तो बातों बातों में कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ।
1: सर स्ट्रेस तो टच वुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है तो सिर्फ दो लाइन्स
0: जी प्लीज।
1: ये

0: खुदा बड़ा है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और लिसनर्स, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर प्राची आपसे बात कर रही हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। जिंदगी वाकई बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। और अक्सर मैं भी खुद लाइनों को यहाँ जिक्र करता रहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। डॉक्टर, अदरवाइज तो लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन लेने का नहीं देने का। मेरा खुद का मानना ये कि ना आपको टेंशन लीजिए, ना किसी को दीजिए। जिंदगी को खूबसूरत बनाकर रखिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहिए। और आके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। और इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारे रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।
1: सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद।
1: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
0: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
1: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
0: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
1: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:15 हो चुके हैं, 4 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। भाई खास बात ये है कि इस वक्त वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल है, आसाम है, पुडुचेरी है और इस तरीके से केरल है और मतलब हर तरफ एक माहौल है। लोग बाग अपडेट्स देख रहे हैं, टीवी सेट से चिपके हुए हैं कि कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, कौन पीछे हो गया वगैरह वगैरह। खैर, अपडेट आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने शुरू हो गए और हम तो ये चाहते हैं कि देश हित में सब अच्छा हो, बेहतर हो। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह कि आज मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है ना, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल गया है, यानी कि रिमझिम रुझुन बारिश हुई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत गर्मी के मौसम में हम सबको मिल ही रही है। और दिल्ली NCR में सुनने में भी आ रहा है कि आने वाले समय में रिमझिम रुझुन बारिश के आसार और भी हैं। हाँ देखो, जिसके घर मकान, मतलब कहते ना मकान का काम चल रहा है, चिनाई, जिसे देवसी भाषा में बोलते हैं चिनाई का काम चल रहा है, तराई करने की मतलब जो समस्या है वो कम हो गई है आगे आगे। हाँ, अगर बच्चों को लगा दिया जाता है कि बेटे जाओ तराई करो, यानी कि पानी का छिड़काव करो, हाँ उनकी दिक्कतें हो जाती थी लेकिन कुदरत ने छिड़काव कर दिया आगे। ऑन रोड सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करने की बहुत जरूरत है और जल भराव जहां हो जाता है वहां गड्ढे हमें नजर नहीं आते। हाँ ये तो सच बात है कि दिल्ली NCR में गड्ढे हमें मिलते ही मिलते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तू मोहब्बत है फ्रॉम द मूवी तेरे नाल लव हो गया, आतिफ असलम की आवाज, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: क्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:23 हो चुके, 4 तारीख है। और अपडेट क्या है हमारे आसपास, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3rd में आज उसके आसपास के इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह का जो तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस, और आज दिन का अधिकतम जो टेम्परेचर रहने की संभावना है वह है 39 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आसमान की जो स्थिति है, दिन भर धूप खिली रहेगी और आसमान मुख्य रूप से थोड़ा सा साफ रहने की संभावना है। और हवा की जो गति है वो लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता की अगर हम बात करें तो हवा में नमी का स्तर 49% के आसपास रहेगा। और वहीं AQI की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 38 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है दोस्तों। और वहीं सूर्योदय हुआ 5:38 पर, सूर्यास्त होगा 6:57 पर। फिलहाल कुल मिलाकर मौसम जो है दिल्ली NCR का बहुत खूबसूरत हो सकता है, मतलब आगे चलकर और रिमझिम रिमझिम बारिश के आसार है, लेकिन इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। और ऐसे में आप समोसे खा सकते हैं, लेकिन सिलेंडर महंगा हो गया कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो चुका है, तो जिसका फर्क है वो हम सबकी जेब पे पड़ रहा है और आने वाले समय में पड़ेगा। इसके रुझान आने शुरू हो गए, मतलब जैसे वोटों की गिनती के रुझान आने शुरू हो गए, समोसे की भी रुझान शुरू हो गए। कहीं कहीं 25 रुपए के 2 कर दिए लोगों ने आगे। चलिए, खैर कुल मिलाकर कहने का आशय सिर्फ हमारा ये कि जब भी मौका मिले तो मौके पर चौका मारेगा, यानी कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

दिलजीत दोसांझ की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। गुड मॉर्निंग। और स्टूडियो की घड़ी में 9:34 हो चुके हैं, 4 तारीख है। और क्या है अपडेट, उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह है कि गर्मी का मौसम जब आता है तो निश्चित तौर पर हम सब भागते हैं एसी की तरफ। कहीं कहीं लोग जाते हैं पेड़ों की छांव में। पेड़ों की छांव की तो बात ही अलग है। पेड़ों की छांव हम लेना चाहते हैं, पौधा शायद हम लगाते हैं या नहीं लगाते। इस बात का हम ख्याल रखें कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए। एक पौधा जब आप लगाएंगे तो वही पौधा जब वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो निश्चित तौर पर आपके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि यार ये पौधा मैंने लगाया। और आज इस पेड़ के नीचे जो कि बड़ा हो चुका है वो पौधा आप अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, लोग वहाँ सुस्ताते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि एसी बहुत ज़्यादा इस वक्त चलते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, है ना, यानी कि आग लगने के हादसे, एसी फटने के हादसे। और अभी एक ऐसी घटना हमारे सामने आ रही है कि दिल्ली के विवेक विहार के एक घर में आग लगी और जिसकी वजह से वहाँ असामायिक 9 लोगों की मृत्यु हो गई। शुरुआती जाँच में ये सामने आया कि एसी को एक कारण बताया जा रहा है और दम घुटू, यानी कि यूँ कहें कि जब गैस पास नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, दम घुटने से भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो 9 लोगों की मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है। हर घटना से अगर हम सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जन धन हानि को होने से हम बचा सकते हैं। और अपडेट्स बताते हैं कि एसी के अंदर प्लास्टिक वायर, कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जलने पर जहरीली गैस फेंकते हैं बाहर की तरफ, जहरीला धुआं वो घर में फैल जाता है। और इन जहरीली गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी नाम शामिल है, और जो कि ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है और जो कि दम घोट देती है। और एसी से, यानी कि इस तरीके से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं कि यानी कि एसी की सही समय पर सर्विस आप ज़रूर कराएं और घर के जो दरवाजे हैं उनको पूरी तरीके से लॉक ना करें। कहीं ना कहीं थोड़ा वेंटिलेशन यानी कि हवा आ जाए, इस बात का भी ख्याल रखें। और अक्सर हम घरों के ताले लगाकर सोते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि चाबी कहाँ है या सेंट्रल लॉक जिसे कहते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी लापरवाहियाँ सामने आई हैं कि जिसकी वजह से 9 लोगों की असामायिक मृत्यु हुई है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को ऐसे विषम परिस्थिति में शांति दे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत। मौसम का मिजाज बदल चुका है, मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। और पश्चिम बंगाल, पुंडुचेरी, आसाम, वहाँ के जो रिजल्ट हैं यानी कि मतगणना शुरू हो चुकी है, रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 एफएम।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ स्टूडियो की घड़ी में। सब वक्त 9:43 हो चुके हैं, 4 तारीख है। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि एसी की साफ सफाई, एसी का रख रखाव बहुत जरूरी है। जैसी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो दिक्कतें परेशानी हम सबके सामने बहुत ज्यादा आती हैं और जनधन की हानि होती है। जैसे कि दिल्ली में एक घटना घटी है और जिसकी वजह से एसी फटने की वजह से 9 लोगों की असामायिक मृत्यु हुई है। कारण बहुत सारे सामने आते हैं। अब हम क्या करें? एसी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एक वजह बताई जाती है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत से लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि एसी का यूज करते हैं। और अगर एसी कई घंटे चल रही है, कई घंटे लगातार वो चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक तार लूज है या खराब है क्वालिटी, ये आप चेक कर लें, करा लें। तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर क्वालिटी सही नहीं है, कोई वायर लूज है, तो वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये एक आग की वजह बनता है। बचाव के लिए ज़रूरी है कि सर्विसिंग समय पर आप करा लें। एक बात, ओवरलोड या फ्लैक्चुएशन का भी जिक्र आता है हमारे सामने। तो जब वोल्टेज अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो जिसकी वजह से फ्लैक्चुएट होना होता है, और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन से एसी को बचाने के लिए स्टेबलाइजर का आप यूज कर सकते हैं। और एसी में धूल और गंदगी होना, ये भी एक वजह सामने आती है। तो इस तरीके से सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। सस्ते पार्ट्स का इस्तेमाल आप ना करें और ख़राब इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से एसी का मेंटेनेंस आप ना कराएं। जो एक्सपर्ट हैं, जो उसकी जानकारी रखते हैं, उन्हीं से आप एसी की सर्विस कराएं और वक्त रहते हुए अपने आप को जो सावधानियाँ हैं उनका हम ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई हानि होगी ही नहीं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक सावधानी का अलार्म भी होना बहुत जरूरी है कि प्लीज आप वहां मत जाइएगा, वहां से निकल जाइए क्योंकि भूकंप आ रहा है। जी हाँ, एक ऐसी खबर हमारे सामने, तो मुझे लगा कि इसके बारे में निश्चित तौर पर आप और हम बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। अच्छी खबर यह कि भारत में अब तक जब कोई आपदा आती थी तो लोगों को SMS या ऐप के जरिए एक अलर्ट मिलता था, लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें थी। इंटरनेट न हो, ऐप न हो या SMS की जो लिमिट है, जिसे हम कहते हैं कि सीमा हो, तो अलर्ट नहीं पहुंच पाता था। अब इन सब की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भारत ने, इंडिया ने पहली बार अपना खुद का स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है और इसमें इसका जो उद्घाटन किया, इसके जो यू कहें कि इस विभाग के जो मंत्री साहब हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय स्तर पर इसको लॉन्च किया और लॉन्च के साथ ही एक साथ 12 करोड़ मोबाइल यूजर्स को अलर्ट मैसेज भेजा गया और ये सिस्टम पूरी तरह भारत में बनाए और बिना इंटरनेट, बिना ऐप और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के हर मोबाइल तक ये पहुंच रहा है और पहुंचेगा। अब इस सिस्टम से होगा क्या? इसके जरिए आपको भूकंप के बारे में पता चलेगा, सुनामी के बारे में, बिजली गिरने और गैस लीकेज जैसी आपदाओं के लिए तुरंत अलर्ट मिलेगा। यानी जैसे ही कहीं कोई खतरा होगा तो उस इलाके के सभी मोबाइल पर फौरन चेतावनी पहुंच जाएगी। ये ध्यान रखिए, उस इलाके के यानी कि क्षेत्रीय जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में उस जगह अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। आए हाय,
3: ब्यूटीफुल ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसीरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां, जब हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मान लीजिए अगर आप बीमार हैं तो आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उन कामों की वजह से जो आपसे लोग जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो उनका काम भी प्रभावित होता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं, कई बार उनका काम मारा जाता है, तो कितनी हानि होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हमसे जुड़े हुए होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उनका असर हम पर तो होता ही होता है, हमसे जुड़े अन्य लोगों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसको सही कराने में पैसा लगता है और हम काम पर भी नहीं जा पाते तो वो भी हमारी हानि होती है, और जो हमारा पैसा बचा हुआ रखा है वो कहीं ना कहीं बीमारी को ठीक करने में लग जाता है और हमारे जो घर के अन्य काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तभी कहा है कि आपकी अगर सेहत अच्छी होती है तो आपको लाभ ही लाभ है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बात पहुंचाते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, अपना टीकाकरण करवाएं। और आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में खासकर हम बात करेंगे टीकाकरण की, क्योंकि टीकाकरण के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि टीका क्यों लगवाएं, इससे बुखार आ जाता है, दर्द होता है, और जब हम ठीक हैं तो टीका लगवाने की क्या आवश्यकता है, और भी बहुत तरह की बातें टीकाकरण के बारे में प्रचलन में हैं। तो इन्हीं सब भ्रम को तोड़ने के लिए और आप तक सही जानकारी पहुंचे कि टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें आने वाली गंभीर समस्याओं से, बीमारियों से बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्नों को बचाने के लिए, तो किस तरह से टीकाकरण काम करता है और हमें कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टीकाकरण से जुड़ी हुई हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, और इनसे जानकारी ले रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च या सीफार की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके, बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं, जानते हैं बच्चे की जान बचेगी फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में? और दूसरी चीज, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़ें। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है, और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण, तो तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, माने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह दे कि हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज़ आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन्स की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन्स, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का, अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है। तो एक बच्चे की अगर मौत होती है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया। तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब हैं, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
2: बहुत बड़ा अंतर है ना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं, ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगी। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है क्योंकि वो रोज़ हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीज़ें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
2: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, 10 तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओं का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज़ है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
2: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकॉकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहाँ के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए, या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
2: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीज़ें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियाँ ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए, एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICVS वाला सेंटर। जब माएं राशन लेने जाती है ना, वहाँ पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो उस दिन गए थे फलां दिन, तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी, अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाति इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है। और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं। गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है। माँ तो माँ ही होती है।
3: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज़ में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझें हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रिएश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ही हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
3: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीज़ों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फ़ायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज़ को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाए। तो तीन चीज़ें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज़ को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज़ हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है, जैसा आपने कहा, कि उनकी बात को सुनना,

0: बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना और वैक्सीन के लगने पर, वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो, आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ, इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं, इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना, तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए, अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि टीकाकरण जो है ना, वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
0: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आएं माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
1: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के माध्यम से आपने जाना कि टीकाकरण हमारे जीवन को बचाने के लिए कितना जरूरी है। हमें अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, आशा दीदी हैं, ANM बहन जी हैं, उनकी बात माननी चाहिए, और अपने बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण गंभीर बीमारियों से हमको बचाता है। अगर हम टीकाकरण समय से नहीं करवाते तो हमें कहीं ना कहीं एक दिन पछताना पड़ता है कि काश हमने डॉक्टर साहब की बात मान ली होती, काश जो रेडियो पर कार्यक्रम आया उसमें जो बताई गई बातें हमने मान ली होती, तो शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। तो हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों का जरूर टीकाकरण करवाएं समय पर। फिलहाल समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्ते क्लास, टीवी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
5: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला

सकती है। इन नन्ही आँखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: कराएंगे।
1: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जम लेते हैं। अब ये अस्पताल अस्पताल
0: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
1: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश, बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जी हुई ना बात। तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

सावित्री सत्यवान के साथ साथ और सत्यवान की उस झोंपड़ी में पहुंच गई कि जहां सत्यवान के अंधे माता और पिता विश्राम कर रहे थे। तो दोस्तों, किस तरह से आहट सुनकर के सत्यवान की माँ सत्यवान को कुछ कारण लग गई, क्यों कि बगैर सत्यवान के तो बड़ा मुश्किल टाइम कटा करता था माँ बाप का, भला कैसे प्यार में कहते हैं। लेकिन सावित्री अपनी सासू के पांच

0: तुम्हारे पुत्र मधु सावित्री भी है।
1: अच्छा,
0: किसे मैं वर के लाया हूँ।
1: अरे तेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी। अरे
0: लेकिन माता जी सारे भेद बताऊ।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
3: मैंने

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं रणवीर, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह छुपते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
6: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो, क्या थूकूंगी नहीं?
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
8: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
9: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
10: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
11: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
9: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: रमनोज काय मुँह लटकाए बैठो, का बात होगी?
3: अब कहो बताऊ भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसे कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना आगे बड़ा काम आएगो।
2: तो कहा हुआ, मिलो ना? तो
3: मिलो तो है, पर्याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
2: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी का नाम कुछ और गेर दियो
3: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
2: तो का बात है
3: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
2: ए तो या में इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
3: तो अभी वो ठीक ना होवे?
2: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरा टीका लगवा लिया हो पर वो प्रमाण पत्र में ना लिखा गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण ना लिखा गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कोई दूसरे नंबर का उपयोग करो गए हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यू बस एक ही बार ठीक हो गया।
3: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
2: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वहाँ के बाद कोविन के होम पेज ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जा मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक OTP आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा दी। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
3: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
2: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
1: आज हम लोग कक्षा 6 के पाठ बचपन पर बातचीत करेंगे। साथियों, इसके सहारे शायद हम अपने बचपन पर भी बात करें। आपने बहुत से लोगों के बचपन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में, गांधी जी के बचपन के बारे में, विवेकानंद जी के बचपन के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में, बहुत सी बचपन की कहानियां पढ़ी होंगी। और देखिए कि कृष्णा सोबती, जिसके बचपन के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बड़ी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज जिस बचपन के बारे में वो बात कर रही हैं, उनसे इसमें क्या फर्क है, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। साथियों, आज मेरे साथ तनिषा बैठी हुई है। तो तनिषा से मैं जानना चाहूंगी कि तनिषा, तुम बताओ कि 2-3 साल पहले तुम, अगर खान पान तुम्हारा क्या बदला है, क्या आज और पहले में क्या पहनावा ओढ़ावा बदला है, क्या तुम्हारी पसंद बदली है, इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ी सी बताओ तनिषा।
2: मेरे बचपन में पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, अब मैं जीन्स टॉप पहनने लग गई। पहले बहुत कुछ खेला करती थी, अब खेलने से रोका जाता है, कुछ पढ़ने के लिए बोला जाता है। अब खान पान में भी बदलाव आया, जैसे पहले चाउमीन बर्गर इतना नहीं मिलता था, पर इतना अब मिलना लग गया है। तो ये सब बदलाव आए हैं मेरे बचपन में।
1: अच्छा, तुम्हें अच्छा लगता है ये बदलाव?
2: हाँ जी,
1: अच्छा लगता है। चलो आज अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में। साथियों, कृष्णा सोबती का एक कार्यक्रम है जो आप सभी सुन लीजिएगा। थोड़ा सा कृष्णा सोबती से हमारे बच्चों ने कुछ बातें की हैं, उनकी पसंद के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके लेखन के बारे में, वो सुन लीजिए और फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। उसके बाद आप ये ज्यादा जान पाएंगे कि कृष्णा सोबती जो यहाँ बचपन के बारे में कह रही है, उससे कहाँ तक आज भी उनकी स्मृतियों में वह समाया हुआ है, कहाँ तक वह दिखाई पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस पूरे पाठ में किन किन बातों पर लेखिका ने जोर दिया है। आपको ध्यान होगा, आप पाठ तो पढ़ के आए होंगे और जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हुए आप ध्यान करिए कि पहले शुरुआत कहाँ से की है। शुरुआत में ही वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, ये यहाँ जितने रिश्तों की बातें इन्होंने की हैं, ये सारे रिश्ते किसी एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि लेखिका का व्यक्तित्व काफी दिलचस्प है ना तनिषा?
2: हाँ जी।
1: जरूर उनमें कुछ खास बात है, तभी तो उनमें जीजी भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें बुआ भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें दादी भी, उनमें नानी भी, कुछ भी हो सकती है, मौसी भी, और दोस्तों के साथ दोस्त, आपकी दोस्त भी हो सकती है।
2: हाँ जी।
1: तो एक ऐसे व्यक्तित्व का तुरंत पहली ही पंक्ति में उन्होंने परिचय दे दिया है कि जो सबके साथ घुल मिल करके उसके जैसा हो जाने वाला होता है। शुरुआत उन्होंने यहाँ से की है। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करते हुए तुरंत वो आ गई हैं कि आज जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, आज जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, लगता है जैसे थोड़ी बूढ़ी हो रही है, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है, एहसास होता है ना थोड़ा सा। फिर अचानक याद आता है कि ऐसा भी नहीं है। उन्हें स्मृतियों में याद आता है कि एक समय था जब वो फ्रॉक पहना करती थी, जब वो लहंगे पहना करती थी, जब वो घाघरा पहना करती थी, स्कर्ट पहना करती थी। और उनको जैसे ही हम बचपन के बारे में याद करते हैं ना, हम थोड़े और नए हो जाते हैं, थोड़े और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही हम बचपन के बारे में सोचते हैं, वैसे ही थोड़ा और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, अच्छा लगता है ना, थोड़ा कूदना, खेलना, मस्ती। तुमने कहा ना कि अब हमें खेलने को नहीं मिलता है, मना किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता से भी मैं आग्रह करूंगी, कैसा नहीं करना चाहिए, खेलने दीजिए बच्चों को बाकायदा। और ये बचपन फिर लौट के नहीं आता है। बचपन तो एक बार गया तो गया, सिर्फ स्मृतियों में रह जाएगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ में, अनुच्छेद में, जिसको हम लोग कहें कि लेखिका ने अपने पहनावे ओढ़ावे का जिक्र किया है। अब इस पहनावे ओढ़ावे को पढ़ करके, सुन करके आपको लगता होगा कि ऐसा लगता है कि आज तो ये सारे ड्रेस ओकेजनली पहनते हैं हम लोग, किसी किसी खास उत्सव पर पहनते हैं, किसी की शादी में। अब वो समय चला गया जब सहज ढंग से इसको हम पहनते रहे हों। तो यानी पहनावे ओढ़ावे में जो इतना बदलाव आया है उसकी तरफ ध्यान दिलाती है लेखिका। तो ऐसा पहनावे ओढ़ावे में जो बदलाव आया है उसकी ओर हमारा ध्यान ले जाती है। और सच पूछिए तो बच्चों, आप लोगों को तो एक परियोजना भी ऐसा करना ही चाहिए कि आखिर किन दशकों में कौन से कपड़े ज्यादा मशहूर रहे हैं, और बच्चे का क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस राज्य के बच्चे क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस देश के बच्चे भी आगे जाया जा सकता है, पहले राज्य तक करिए बात। तो आप पहनावे ओढ़ावे पर एक बाकायदा एक परियोजना कार्य कर सकते हैं, और अपने इस परियोजना कार्य में अपनी फाइल में जो आप फाइल बनाएं उस फाइल में बाकायदा अपने से कटिंग करके कुछ कपड़ों को वहां लगा भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो आपको कपड़ों की जानकारी हो पाएगी। और एक और बात कहूंगी तनिषा, जब कपड़ों के बारे में करना ना, कपड़ों लगाना अपनी फाइल में, तो ये भी ध्यान रखना कि जो कपड़े होते हैं ऊनी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े, तरह तरह के कपड़े होते हैं ना, तो वो कौन से कपड़े किस मौसम में पहना जाता है, आप बाकायदा ज्योग्राफी की भी जानकारी भी कर लेंगी किस राज्य का है, और मौसम के साथ साथ आप बाकायदा साइंस को भी जान पाएंगी, काफी कुछ जान पाएंगी। तो कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, यह भी आप जान पाएंगी। तो वह भी उसमें चिपका करके, छू करके जानिए कि कैसा उसका स्पर्श होगा, तो वह कपड़ा किस राज्य में और किस समय में पहना जाता होगा, कहाँ बनता है। हथकरघे की भी दौरा कर सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कुछ समय बाद आप चाहें तो देख सकते हैं, और ना सही तो आप वेबसाइट पर जा करके देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट पर जा करके देखिए, हथकरघों के बारे में जानिए कि हथकरघा के बाद अब क्या पावरलूम आ चुका है, अब बदल गया है ना, टेरेलिन के कपड़े जो तुम पहनते हो वो बदल गया है, पहले हाथ से बनते थे कपड़े। तो कपड़ों के बारे में पूरी एक जर्नी, पूरी एक यात्रा बाकायदा आप लिख सकते हो, एक परियोजना कार्य में कर सकते हो अपने। फिर दूसरे अंश में आप आए तो लेखिका सिर्फ कपड़ों तक नहीं सीमित रहती हैं, कपड़ों की देखरेख कैसे करती थी बचपन में ये लोग, जूते पहनते थे तो जूतों की देखरेख कैसे करते थे, इसका भी जिक्र आता है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि तुम लोग भी शायद अपने कपड़ों की देखरेख खुद करते होगे, या तुम्हारी माँ करती है, कौन करता है?
2: मम्मी कभी हम।
1: अच्छा, तो लेकिन अपने से करना चाहिए अपने कपड़ों की देखरेख। लेखिका ने खास तौर से जोर दिया है कि अपने मोजे धोना, अपने जूते पॉलिश करना, ये हमारा खुद का काम होता था, कोई और में हमारी सहायता इसमें नहीं करता था। तो ये बात जोर देकर लेखिका यहाँ पर कह रही हैं, हम बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए ही तो कह रही हैं। तो आप बाकायदा, ये लोग खुद काम करते थे, हाथ से काम करते थे, कोई इनका सहायक नहीं इसमें साथ देता था, न तो मम्मी पापा, वो खुद से काम करते थे, खुद से उसको किसी देख रेख करते थे, और कैसे देख रेख करते थे इसका भी जिक्र आया। और जैसे ही जूते उनके हाथ में आए लेखिका के, उनको तुरंत ध्यान आया कि ये जूते जब हम लोग पहनते हैं तो कभी कभी तो ये काटते हैं, कभी कभी तो एक आवाज सी होती है, चुरचुर की आवाज होती है। फिर वो कहती है कि पिछले जमाने में जब हम लोग जूते पहनकर चलते थे तो क्या करते थे, हाथों में रुई लेकर चले जाते थे ताकि जब कभी काटे जूते तो हम उसमें लगा लें। आप भी ऐसा करती है?
2: नहीं,
1: एकदम से एक एक करके जब उनको ध्यान आता है कपड़ों का और आज और पुराने में क्या अंतर था, वो तुरंत करती चली जाती है। फिर से उनको याद आता है कि एक हमारे जमाने में मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे, ग्रामोफोन। देखा आपने ग्रामोफोन?
2: अब इस जमाने में नहीं है वो।
1: अरे है, अभी भी आपको म्यूजियम में भी दिखाई पड़ेंगे, कुछ शौकीन लोग अपने घरों में भी रखते हैं, आज भी रखते हैं, और बहुत जो बहुत ही शौकीन लोग हैं वो लोग ग्रामोफोन रख रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से शोपीस की तरह हमारे पास रहता है, ज्यादा उसका प्रयोग नहीं होता है, कम लोग उसका प्रयोग करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ग्रामोफोन हुआ करता था, आज क्या हो गया है उसकी जगह पर?
2: आजकल फोन होने लग गए, टीवी होने लग गए,
1: रेडियो
2: हो गए, लैपटॉप हो गए, टैब हो गए,
1: सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो चुका है। तो बहुत से मनोरंजन के साधन आज हो चुके हैं, इन मनोरंजन के साधनों के साथ और पहले के मनोरंजन की तुलना किया जाए साधनों की, तो बहुत कम हुआ करता था। वो थोड़े से संगीत हम लोग सुन लिया करते थे ग्रामोफोन पर, ऐसा लेखिका कहती हैं। तो एकदम से क्या अंतर आया है मनोरंजन की दुनिया में, उस पर भी हमारा ध्यान दिलाती चली जाती हैं। आप चाहो तो इस यात्रा को भी बाकायदा लिख सकते हो, यानी मनोरंजन की यात्रा, यानी संगीत की दुनिया की यात्रा। तो आप जानने की कोशिश करो कि पहले कैसा होता था और आज कैसा होता था, उसमें तकनीकी परिवर्तन कैसा आया है, और उसमें अगर देखा जाए तो लेखन में कैसा, गीतों के लेखन में कैसा परिवर्तन आया है, संगीत में कैसा परिवर्तन आया है। चाहो तो आप लोगों से बातचीत भी कर सकते हो, संगीत की दुनिया में रहने वाले लोगों से आप लोग बात भी करो और इसको करो। इससे आपको बहुत से क्षेत्रों की जानकारी होगी, केवल हिंदी, केवल भाषा के बारे में नहीं, बल्कि भाषा के जरिए आप संगीत की ओर जा सकते हैं, आप बाकायदा बहुत सी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो ये भी वो आगे करती चली जाती। फिर वो आ जाती है खान पान पर। खान पान में उन्होंने बहुत सारे जिक्र किए हैं, आपको याद होगा, मुंह में पानी आ रहा है ना। कुल्फी की बात करती हैं, वो कहती हैं कि पहले कुल्फी हुआ करता था, आज आइसक्रीम हो गया है, लेकिन आपको याद होगा कि आज भी कुल्फी चलती है, बहुत फर्क नहीं आया है। कम से कम खान पान में कुछ चीजें आज हमारे यहाँ एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि पुरानी चीजें भी बाकायदा शौक से वो लोग उसको खाते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कुल्फी का जिक्र किया है इन्होंने कि कुल्फी हुआ करती थी और आज हमारे यहाँ आइसक्रीम होता है, लेकिन शरबतों में बदलाव आ गया है। आज तुम क्या पीते हो?
2: आज गर्मियों में कोक पीते, पेप्सी पीते, पर पिछले जमाने में कोक की जगह शरबत होया करते थे, खसखस का।
1: तुम्हें कैसे पता कि शरबत होया करते थे? अब भी पीते हो?
2: नहीं, अब तो नहीं पीते।
1: हाँ, तो ये लेखिका ने भी वर्णन किया है कि फालसे के शरबत हुआ करते थे, बहुत सारे शरबत, तरह तरह के शरबत हुआ करते थे, और उन शरबत को पीते थे पहले बाकायदा। कोक और पेप्सी पहले नहीं हुआ करता था, इस तरह की चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। तो एक अंतर जो आया है और कैसे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम सिर्फ वो पीते हैं और यह पीते हैं शरबत, तो दोनों में स्वास्थ्य में क्या अंतर आता है, उसका भी जिक्र करती चली जाती है। फिर एकदम से लेखिका आती है और कहती है शिमला में रहती थी, उनका पूरा बचपन शिमला में बीता, तो शिमला की पहाड़ियों का जिक्र करती हैं, साथ ही उन रास्तों का जिक्र करती हैं कि कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों और कैसे ऊंचा नीचा रास्ता हुआ करता था। लेकिन जैसे ही रास्तों का जिक्र करती है ना तनिषा, उनको एकदम से उनको ध्यान आता है कि उन रास्तों में बहुत से ऐसे पेड़ हुआ करते थे जिन पे तरह तरह के फल लगा करते थे, जिनके अब नाम भी हम लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। जैसे उन्होंने कसमल फल का जिक्र किया है। कसमल जानती है आप कसमल क्या होता है? एक तरह की रसभरी है। रसभरी के नाम से आप जानते हो ना, रास्ते में आप लोग रसभरी खाते हो, तो रसभरी एक तरह का। तो नए नए शब्दावली भी आ रही है इनके यहाँ कि किसी खास क्षेत्र में किसी के लिए रसभरी के लिए क्या शब्द चलता है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। अगर दक्षिण भारत की लड़की कोई आपकी फ्रेंड है, मित्र है, तो आप उससे जानने की कोशिश करो कि इसके लिए उनके यहाँ क्या शब्द है, क्या ये फल उनके यहाँ मिलता है क्या, अगर मिलता है तो क्या नाम है। तो ये सारे नाम अगर इकट्ठे करोगे ना, तो आप बहुत सी भाषाएं जान पाओगे, बहुत सी भाषाओं के शब्द जान पाओगे, उनका खान पान जान

0: पाओगे, उनका रहन सहन जान पाओगे, तो वह भी कोशिश करना ये बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारी मित्रता भी अच्छी हो जाएगी निश्चित रूप से, है ना। तुम्हारे दोस्त के साथ मित्रता भी अच्छी होगी और उनके साथ खान पान के भी शेयर कर पाओगे। और साथ ही इनमें एक एक और शब्द आया है, काफल।
1: काफल
0: आप पता नहीं, आप नहीं जानती होंगी, मेरा ख्याल है दोस्तों नहीं जानते होंगे।
1: एक तरह का फल होता है।
0: फल तो होता है, लेकिन इसको हम लोग आज क्या कहते हैं?
1: सैतूस।
0: अच्छा, बेबेरी। जी बिल्कुल जी, जिसको हम लोग बेबेरी भी कहते हैं। बहुत अच्छा। तो इसको जानने की कोशिश करो कि अलग अलग भाषाओं में जो आपके साथी बैठे हैं अलग अलग भाषाओं के, वो साथी इन शब्दों को क्या कहते हैं, क्या उनके यहाँ क्या नाम है इसके लिए। तो एक बार जरा सा जरूर जानने की, आपके पास एक पूरा शब्द भंडार हो जाएगा और एक ही खाने की चीज के लिए अलग अलग नाम जो हमारे देश में मशहूर है अलग अलग राज्यों में, वो भी आप इकट्ठा कर सकोगे, आप बहुत कुछ जान पाओगे। तो इसको जरूर करना साथियों। एक और जिक्र आया है, चेस्टनट सुना है?
1: इस जमाने में तो नहीं सुना।
0: देखा नहीं होगा। वॉलनट सुना होगा। अखरोट सुना होगा।
1: हाँ, अखरोट।
0: तो अखरोट की तरह का एक फल होता है चेस्टनट। ये सब पेड़ उन्होंने शिमला की पहाड़ियों में देखे, रास्ते में घूमते हुए, तोड़कर खाते हुए, जो मस्ती की है उस मस्ती को याद कर रही हैं। और मस्ती को याद करते करते लेखिका अनजाने में ही हमें पूरा का पूरा उन फलों का परिचय देती चलती है कि कौन कौन से फल हैं, कौन कौन से नट्स हैं जो उस क्षेत्र में हो रहे हैं, होते थे, और आज हमें किस नाम से हम उनको जानते हैं, आज अलग अलग राज्यों में किस नाम से हम उसे जानते हैं, ये भी वो कहीं बताती जाती है। और ये भी बताती चलती हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, ये भी बात है। आपको अखरोट हर जगह तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, हर जगह नहीं होंगे, तो वो पहाड़ियों पर होते हैं, तो ये अखरोट हर जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, अखरोट की तरह के ये फल भी हर जगह नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो यह भी हमें पता चलता जाता है कि ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत आप जानते चले जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, कौन से खान पान होते हैं, यह भी पता चलता है। फिर साथ में चने जोर गरम का जिक्र करती है, एकदम से कहती है कि हम लोग चने जोर गरम खाते थे, उसके सामने ही जब हम लोग रास्ते से गुजरते थे, तो रास्तों से आगे जब हम चर्च जाखू की पहाड़ियों पर पहुंचते थे, तो जाखू की पहाड़ियों पर चर्च दिखाई पड़ता था, उसके सामने ही एक स्कैंडल पॉइंट हुआ करता था शिमला में, तो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने कुछ दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों में क्या हुआ करता था उसका जिक्र करती है। सबसे पहले तो उनको ध्यान आता है कि हम जब उन सड़कों पर चलते थे, रास्ते पर चलते थे, तो क्या खाती थी? चने जोर गरम। अच्छा, चने जोर गरम किस चीज में खाते हो, ध्यान है आपको? कागज का एक
1: कागज की पुड़िया बना के पुड़िया खाते हैं।
0: हाँ, और कागज की पुड़िया का शेप कैसा होता है?
1: वो गोल होता है और नीचे से ना मुड़ जाता है।
0: ये खुद हाथों से बना लेते हैं?
1: हाँ, हाथ से बनाते, कागज से बनते हैं।
0: इसके लिए किसी चीज की जरूरत
1: किसी की जरूरत?
0: कितना सुंदर है कि आप खान पान के लिए आप बिल्कुल हाथ से बना हुआ, बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं, आराम से एक कागज जो कि रद्दी कागज, जिसको हम लोग रद्दी में फेंकने जाते हैं, उन कागजों से बाकायदा कोने बन जाते हैं, और वो भी कितनी सहूलियत से, कितनी वैज्ञानिक ढंग से कि ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, आसानी से उसमें से आप दाने निकाल लो। और फिर लेखिका एक बहुत सुंदर बात करती है, वो कहती है कि जब हम वो खाते हुए चलते थे ना, तो हमारी चाल बदल जाती थी। तुम भी जब मस्ती में अपने साथियों के साथ खाते हुए, दोस्तों ध्यान रखना कि सामान्य ढंग से चलना, बिल्कुल बिना निष्फिक्र होकर, जिसको कहते हैं निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर निश्चिंत होकर चलना, और ऐसे चलना कि स्कूल जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो, दोनों चाल में फर्क होता है। आज से जरा ये भी ध्यान देना शुरू कर देना कि लोग चलते हैं तो कब कौन सी चाल है, आप बिना समझे बिना पूछे उनसे जान जाओगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी चाल को देखकर समझ पाओगे कि उनके भाव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, सब कुछ आप समझ पाओगे। उसका भी जिक्र यहाँ पर लेखिका ने किया है। और साथ ही उन्होंने आगे चलती हैं, बाजार देखती हैं, दुकान के सामने में क्या बिकता है, तो एकदम से उन्हें याद आता है कि उस दुकान में रेल का जो उस जमाने में जो टॉय ट्रेन चलती है ना, खिलौना गाड़ी एक चलती है वहाँ पर शिमला में, जो कालका से लेकर के शिमला तक जाती है, तो वो बाकायदा एक छोटी सी ट्रेन होती है और कई उसकी नहर टनल के बीच से जाती है, गुफाओं के बीच से जाती है, तो वैसा ही एक मॉडल भी पहले बहुत बिकता था, क्योंकि वो शुरुआत थी ना, तो शुरुआत के समय मॉडल भी बहुत अच्छे से बिकता था, लोग उसको पसंद करते थे, तो लेखिका उसका जिक्र करती हैं। जैसे ही ट्रेन का जिक्र करती हैं तो वो कहती हैं कि पहले वही हमें हवाई जहाज की तरह लगा करता था, उसकी गति हमें लगता था इतनी तेज, और आज आप जब उस खिलौने गाड़ी में चढ़ोगे ना बच्चों, तो आप देखोगे, आप चढ़े भी होंगे, आपको पता होगा कि आज लगता है कि हमें कितनी धीमी चल रही है, लेकिन फिर भी वो रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि गति अपने आप बढ़ जाती है। तो उसके बाद हवाई जहाज का जिक्र करती है कि बहुत इक्के दुक्के चला करते थे, ज्यादा नहीं चलते थे। एकदम उसके बाद लेखिका आ जाती है कि जब बाजार की बात करती है, तो बाजार में उनका ध्यान जाता है कि बाजार में तो चश्मे की दुकान भी होती थी, है ना। और चश्मे की यहाँ की दुकान में जब जाती हैं, जैसे ही चश्मा का दुकान उनको याद आता है, तो उनको याद आता है कि उनको एक चचेरा उनका भाई हुआ करता था।
1: भाई
0: वो क्या करता था?
1: वो ने चढ़ाया करता था।
0: हाँ, क्या चढ़ाता
1: था? सूरत बनी लंगूर की।
0: पढ़ो जरा, बताओ क्या है।
1: आँख पर लगाए चश्मा तिनका सूरत बनी लंगूर की, ये लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की।
0: ठीक है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जैसे भाई बहन आपस में चिढ़ाते हैं, उसका भी जिक्र किया है इन्होंने, और खास तौर से चश्मिश कह करके तो सब लोग चिढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन उन्होंने एक कविता ही बना दी। पहले के जमाने में साथियों, आपको ध्यान होगा कि जैसे ही हम एक दूसरे को चिढ़ाते थे ना, तो कविताएं बना देते थे, खेल खेल में कविताएं बना देते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया परंपरा थी। आप भी जरा याद करो, आज क्या आप लोग खेलते हो तो ऐसा कुछ करते हो, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कविताओं की पंक्तियां तुकबंदियां करते हो क्या? करने की कोशिश करो, क्योंकि आप शब्दों से खेलोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, आप शब्दों से खेलते हुए पूरी दुनिया को जान पाओगे, तो इसलिए पूरी शब्दों की दुनिया को जान पाओगे। तो इसलिए साथियों, एक बार करके देखना, बहुत मजेदार सी कविता का जिक्र इन्होंने किया है कि आँख पर चश्मा लगाए। उन दिनों तो लेखिका को बहुत बुरा लगता था, जाकर उन्होंने शीशे में अपने देखो आईना में देखा अपने को, और कहा इतनी भी बुरी नहीं लगती हूँ मैं चश्मा लगा करके। फिर बाद में वो कहती हैं कि चश्मा आज मेरी सूरत का हिस्सा बन चुका है, मेरे चेहरे का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। जैसे मेरी आंखें हैं, मेरे नाक है, मेरे कान है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे सूरत पर यह चश्मा फिक्स हो चुका है। अब उनको चश्मा कैसे पढ़ने लगी, कैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया और भी जिक्र किया है कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा था कि आप धीरे थोड़े दिन लगाओ चश्मे, उतर जाएंगे, लेकिन कभी नहीं उतरा। फिर लेखिका ये भी कहती है कि न उतरने का कारण ये भी है कि मैं बहुत मध्यम रोशनी में पढ़ती थी, यानी मध्यम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, तेज रोशनी, अच्छी रोशनी में पढ़ो, हमेशा अच्छी रोशनी में पढ़ो तो आपकी आंख ठीक रहेगी। तो अपनी आंखों को खराब करने का जिम्मेवार वो खुद को ही बताती हैं। फिर उनका जिक्र आता है, लास्ट जो अंतिम है उसमें वो कहती हैं कि टोपी पहन करके मुझे चलना उन दिनों बहुत खराब लगता था, लेकिन आज टोपियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले शुरुआत में और बाद में कितना अंतर आ जाता है। पहले जो चीज हमें बुरी लगती है वो बाद में अच्छी लगने लगती है। आप खुद भी 3-3 साल के अंतर में बच्चों आप लोग देखिएगा कि आपकी पसंद बदल रही है। जो पहले पसंद नहीं आती थी वो अच्छी लगने लगी, जो आज अच्छी लग रही हो सकता है कल को फिर खराब लगने लगे। तो इसलिए इसमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कोई स्थायी चीज़ नहीं होती है, हमेशा हम धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी पसंद बनती है, और बाद में चल करके एक ऐसी पसंद बन जाती है, बहुत बड़े होते हैं तब जा करके, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमें अच्छा लगता है। लेकिन बुढ़ापे में रंग अपने कम हल्के रंग पसंद आने लगते हैं, लेखिका ने भी जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ आप बाकायदा एक यात्रा कर सकते हो, खान पान का, रहन सहन का, कपड़ों का, भूगोल का, बाकायदा एक यात्रा कर सकते हो। इस पर एक परियोजना जरूर करना। आप नेट के सहारे थोड़ा सा आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और अपने साथियों से बात करिए। ना सहे, आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने साथियों से जिक्र करिए, साथियों से चर्चा करिए, माँ बाप से चर्चा करिए। मोहल्ले में तरह तरह के लोग रहते हैं, एक मोहल्ले में एक ही क्षेत्र के लोग नहीं रहते हैं, कई क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनसे जानकारी हासिल करिए, और पुरानी किताबों से भी थोड़ी जानकारी हासिल करिए, पत्रिकाओं से जानकारी हासिल करिए। बहुत सी पत्रिकाएं भी हमारे सामने अभी आजकल हम लोगों को पढ़ने को मिल जाती हैं, तो उन पत्रिकाओं का, अभी तो गांधी का एक बहुत ही किताब आई है, गांधी के बचपन पर, एक था मोहन, उसको बच्चों पढ़ना बहुत सुंदर तरीके से। और बचपन में गांधी भी शरारत करते थे, जैसे कृष्णा सोबती ने कहा है ना, शरारत करना, हर कोई शरारत करता है। लगता है कि जो बड़ा हो गया, जो महान व्यक्ति हो गया, वो कभी शरारत नहीं करता था, ऐसा नहीं है। सबका बचपन एक जैसा होता है और हर कोई बचपन में खेल करता है, शरारत करता है। लेकिन लेखिका कुछ और भी करती हैं, उन ओर उन तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो हर चीज को ऑब्जर्व करती हैं, अवलोकन करती हैं, जो रास्तों में उन्हें दिखाई पड़ता है उसको देखती हैं, बाकायदा उसके नाम से पहचानने की कोशिश करती हैं, जो एक तरह की सृजनात्मकता है। साथियों, आप भी ऐसा करना, तो ये जरूर करना। मैं थोड़े से कुछ भाषा पर बात कर लूं तुमसे, तुम बता सकोगी इसमें कुछ चीजें आई है। अब जैसे मारना से मार बनता है, है ना, काटना से क्या बनेगा,
1: काट,
0: पलटना,
1: पलट,
0: पलट,
1: पलट,
0: पलट, ये सुना होगा, डायलॉग भी बहुत ज्यादा कविता में है ना, पलट। तो एकदम से पलटना से पलट, फिर सीखना से क्या बनेगा, सीख, हड़प से,
1: हड़प, हड़प,
0: हड़पना से, बिल्कुल। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ चार दिन, कुछ व्यक्ति, एक लीटर, ये क्या है, इसको क्या कहोगे तुम, इन प्रयोगों को क्या कहा जाएगा, ये परिमाणवाचक,
1: परिमाणवाचक
0: संज्ञा है ना। तो अब इनको इसमें विशेषण भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब जैसे मैं तुमको एक वाक्य पढ़ती हूँ, मुझे दो दर्जन केले चाहिए, इसमें क्या है बताओ,
1: दो दर्जन,
0: ये दो दर्जन क्या है,
1: वो संधिवाचक,
0: नहीं नहीं, ये विशेषण है, लेकिन कैसा है, कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक, यानी जो संख्या को बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से कपड़ों में जो इन्होंने कहा ना कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां शब्द इसमें आया है ना, मेरी मौसी कहा है, तो अब इसमें मेरी क्या है बताओ तो जरा,
1: दिलचस्पी,
0: हाँ, नहीं नहीं, मेरी क्या है,
1: मेरी
0: सर्वनाम है ना,
1: सर्वनाम
0: है ना, जो किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मैं संध्या मेरा नाम है, आपका नाम तनिषा है, तो आपके लिए अगर आप जो शब्द प्रयोग कर रही हैं, मेरी, है ना, और मैं जो प्रयोग करूंगी सब सर्वनाम है, तो अभी सर्वनामों के लिए दिलचस्पियां जब आई, मेरी दिलचस्पियां, तो दिलचस्पियां क्या हो गई सर्वनाम के साथ जुड़ी, तो इन संज्ञाओं की विशेषता बता रही है, विशेषता बता रही है, तो संज्ञाओं की विशेषता बताने वाली है ये। तो साथियों ध्यान दो कि शब्दों में जो शब्द प्रयोग किए गए, अब आप मतलब मेरी दिलचस्पियां मैंने कही, कुछ और शब्द भी हो सकता है, इसके दूसरे शब्द बना करके देखो, दूसरे विशेषण लगा करके देखो, मेरी पसंद, पसंद भी तो आपका विशेषण हो गया ना, मेरा पहनावा, मेरा खान पान है ना, मेरी चाल, मेरा हालचाल,
1: मेरा ढंग,
0: मेरा ढंग, और भी कुछ,
1: मेरा उठना, मेरा बैठना,
0: वाह बहुत बढ़िया। तो इस तरह के कुछ विशेषण के खेल करके देखो, अपने साथियों से, अपने अपने भाई बहन के साथ ही खेल करके देखो, और आप पाओगे कि आपके पास बहुत सारे शब्दों की दुनिया खड़ी हो गई है, बहुत सारा शब्द भंडार हो चुका है, और इन शब्दों से बाकायदा आप जीवंत अनुच्छेद लिख सकते हो, जीवंत अपने बचपन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, अपने पिछले जीवन के बारे, पिछले समय के बारे में लिख सकते हो, और अपने माँ बाप के पर भी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हो, अपने माता पिता से थोड़ी सी बातें करो, और बातें करके उनके बचपन की बातों को भी लिख दो, हो सकता है आपके माता पिता ना लिख पाते हो, आप लिख दो उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर किसी को जब कोई अपना बचपन याद आता है तो उसे जीने की इच्छा हो जाती है, और ज्यादा उत्साह आ जाता है जीवन में। तो साथियों, आज हमने बचपन पाठ के जरिए, कृष्णा सोबती के बचपन पाठ के जरिए हमने पूरी यात्रा कर ली शिमला की बाकायदा, और शिमला के साथ साथ वहाँ के पहनावे, ओढ़ावे, खान पान, रहन सहन सब कुछ जाना हमने, और लेखिका की आंखों से देखते हुए केवल वही नहीं जाना, हमें अचानक यह भी ध्यान आता रहा साथ साथ, जब लेखिका वहाँ के रास्तों का वर्णन कर रही थी, तो एक दिल्ली में रहने वाला बच्चा बाकायदा दिल्ली की सड़कों को देख रहा था उस वक्त, एक नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला बच्चा वहाँ की पहाड़ियों को देख रहा था, दक्षिण भारत में रहने वाला बच्चा वहाँ के मसालों के पेड़ों को देख रहा था। तो बाकायदा हर बच्चा अपना अपना बचपन देख रहा था, इनके बचपन के बहाने अपने बचपन की यात्रा आप सब लोग कर रहे थे, तनिषा आप भी कर रही थी, तो मजा आया आपको इस बचपन के बारे में, है ना, इस बचपन के सहारे आप जब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो आप भी इसी तरह का एक अपना बचपन की यादों को ध्यान में रखते हुए, स्मृति को रखते हुए लिखिएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तनिषा आपको आज से ही डायरी लिखनी पड़ेगी। जो कुछ आज अच्छा लगता है, जो कुछ आपको बढ़िया दिखाई पड़ता है, अवलोकन करते हैं आप, ऑब्जर्व करते हैं, उन सब को रोजाना डायरी में लिखते चले जाओ, दर्ज करते चले जाओ। और 2-4 साल बाद जब अपनी ये डायरी खोलोगे तो तुम्हारे पास बाकायदा कच्चा माल होगा, कुछ भी लिख सकते हो उस पर, यात्रा संस्मरण लिख सकते हो, अपनी स्मृतियां संस्मरण लिख ही सकते हो, कहानी लिख सकते हो, कुछ बहुत कुछ लिख सकते हो। तो आज ही से शुरू हो जाओ और लिखो। साथियों, आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना बचपन के बारे में। अब इसके सहारे आप बहुत से लोगों के बचपन के बारे में जान सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि गांधी जी ने भी अपने के बचपन के बारे में जानिए, सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में जानिए, ये तो बड़े लोग हैं। लेकिन सामान्य लोगों के बचपन के बारे में भी, अपने माता पिता के, अपने साथियों के बचपन के बारे में भी जरूर जानो, और आपको पता चलेगा कि सबके बचपन में कुछ विशेष होता है। सबके बचपन में कुछ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है, सिर्फ उसका ही ध्यान गया है। तो आप अपने इस बचपन की बातों को डायरी में तो दर्ज कर ही रहे होंगे। तो आज बहुत कुछ हमने जो चर्चा की, इन बातों को भी लिखिएगा अपनी नोटबुक में, और साथ ही और भी कहानियाँ भी लिखने की कोशिश करिएगा। हम सोचते हैं कि इस पाठ पर और भी आपसे चर्चाएं करते रहेंगे आने वाले समय में। हो सकता है कि कुछ दूसरे दृष्टिकोण से इस पाठ पर हम फिर से चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन आज की चर्चा यही खत्म होती है।
2: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-1166 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो शारदा।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Bingo on Malaysia card, the end. बुखार का दी एंड।
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: देखिए मानव ने क्या बनाया है।
1: अरे सृष्टि, अरे क्या हुआ सृष्टि, मानव ने ऐसा क्या खास बनाया है?
0: ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा विवेक भैया।
1: अच्छा भाई, तब तो जरूर देखना पड़ेगा।
0: हाँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए विवेक भैया।
1: अरे वाह, अरे वाह भाई, ये तो पवन चक्की का मॉडल है।
0: हाँ भैया, शायद मानव ने ये मॉडल स्कूल में विज्ञान दिवस के अवसर पर होने वाले विज्ञान मेले के लिए बनाया होगा।
1: अरे मानव यहीं आ रहा है। ए मानव, मानव इधर आ।
0: हाँ,
1: इसी से पूछ लेते हैं। मानव बताना जरा मॉडल के बारे में।
0: हाँ मानव, ये मॉडल स्कूल में होने वाले विज्ञान मेले के लिए है ना?
2: हाँ दीदी, ये मॉडल मैंने उसी दिन के लिए बनाया है। जरा बताओ तो, पवन चक्की का ये मॉडल कैसा बना है?
0: मानव, ये मॉडल मुझे मॉडल कम खिलौना ज्यादा लग रहा है।
1: हाँ मानव, बुरा मत मानना, लेकिन सच कहूँ ना तो तुमने इस मॉडल को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की, या फिर बनाते हुए ठीक से ध्यान नहीं दिया। अब देखो, इसके पंखे छोटे बड़े है कि नहीं?
0: हाँ।
1: इन सभी का आकार समान होना चाहिए था।
2: विवेक भैया, वो तो जल्दी जल्दी बनाने में ना मेरे को ध्यान ही नहीं रहा।
1: अरे मानव, किस बात की जल्दी थी तुम्हें?
0: अरे भैया, मानव की तो हर काम में जल्दी करने की आदत बन गई है।
1: अरे मानव, कितनी बार समझाया तुम्हें कि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता।
0: भैया कहते हैं ना मानव, जल्दी का काम शैतान का होता है।
3: क्या हुआ बच्चों, कौन शैतान का काम कर रहा है? कोई

0: मम्मा वो तो विवेक भैया मानव को समझा रहे थे कि जल्दी में कोई काम अच्छे से नहीं होता।
1: देखो ना मम्मी, मैंने पवन चक्की का मॉडल बनाया है, अब इसमें कुछ छोटी मोटी गलती तो हो सकती है ना।
2: छोटी मोटी
3: भाई, छोटी मोटी गलती तो ठीक है मानव, पर एक बात का ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी किया गया कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता।
1: अरे मम्मी, पापा आजकल कहते तो रहते हैं कि इतनी जल्दी साल खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं लगता। अब जब प्रकृति ही इतनी जल्दबाजी कर रही है तो मैं क्यों धीरे धीरे चलूं?
0: अरे मानव, अपनी गलती छिपाने के लिए प्रकृति को क्यों दोष दे रहा है?
3: हाँ? वैसे भी प्रकृति में तो सभी कार्य एक निश्चित समय पर ही होते हैं, और प्रकृति कौन सा काम जल्दी जल्दी करती है?
2: और मानव जानता है, ये जिस धरती पर तू इतना उछल कूद करता रहता है ना, उसको भी आज की अवस्था में पहुँचने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे
1: हैं। लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं?
3: हाँ मानव, यही सच है कि लाखों करोड़ों वर्ष के दौरान धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के कारण ही आज धरती वर्तमान की अवस्था तक पहुंची है।
1: तो आपके कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में अलग थी और आज उसकी स्थिति अलग है?
3: हाँ मानव, हमारी धरती तो लाखों करोड़ों वर्षों से धीरे धीरे सजती संवरती हुई आज जैसी बनी है।
2: और जानता है मानव, इस दौरान इस धरती में कई परिवर्तन हुए हैं, तब जाकर यहाँ जीवन को बनाए रखने वाला वातावरण विकसित हो पाया है।
0: मतलब ये भैया कि हमें हमारे आसपास दिखाई देने वाला जीवन पृथ्वी में लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का नतीजा है।
3: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि तुमने। पृथ्वी पर जीवन इसलिए पनपा क्योंकि ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक कारक मौजूद थे, और ये सब धीरे धीरे होने वाले चरणबद्ध परिवर्तनों का ही परिणाम है।
1: भैया, तब तो आपको मुझे धरती के विकास की कहानी सुनानी ही पड़ेगी।
2: अच्छा भाई,
4: गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग पापा।
4: हम कौन कहानी सुना रहा है, जरा हमें भी तो अपनी मंडली में शामिल कर लो।
0: कहानी नहीं पापा, हम तो आज पृथ्वी के विकास की बात कर रहे थे।
4: वेरी गुड भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। पर आज अचानक तुम्हें पृथ्वी के विकास के बारे में जानने की सूझी, क्या कोई विशेष बात है?
0: कुछ विशेष तो नहीं पापा, दरअसल मानव ने पवन चक्की का एक मॉडल बनाया है।
4: वेरी गुड।
0: और पापा, आपको तो मानव की जल्दबाजी की आदत पता ही है, है ना?
2: कुछ नहीं हुआ पापा, बस जल्दबाज मानव पवन चक्की का एक अच्छा मॉडल नहीं बना पाया।
1: पापा, आप सृष्टि दीदी और विवेक भैया की बातों में ध्यान मत दो, ये तो कभी मेरे काम की तारीफ करते ही नहीं है।
3: ऐसी बात नहीं है बेटा, ये बात तो तुम भी मानते हो ना कि इन दोनों के सुझावों से तुम्हारे कई काम भी तो अच्छे होते हैं।
1: वो तो है मम्मी, पर आज भैया की ये बात कि हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आज की अवस्था में पहुंची है, मुझे जरा जमी नहीं। इसीलिए मैं पृथ्वी के विकास के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ।
4: अच्छा, तो ये बात है मानव, वैसे ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर देंगे।
2: हाँ बाबा, और ये भी बता देंगे कि हम कितने इंटेलिजेंट
1: हैं।
4: आखिर तो तुम मेरे ही बेटे हो।
2: बोलना जरूर है। हाँ तो मानव, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि हमारी धरती का जन्म सौर मंडल के जन्म के समय हुआ था, ठीक?
1: हाँ भैया, ये तो मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि पृथ्वी का जन्म करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था।
4: और बच्चों, आरंभिक समय में तो हमारी पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली अवस्था में थी।
0: मैंने तो ये भी पढ़ा है कि शुरुआत में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों, चट्टानों और अन्य पदार्थों की बरसात होती रही थी।
2: बिल्कुल ठीक पढ़ा है शशि तुमने। तब इन बरसने वाले पदार्थों के कारण पृथ्वी में बहुत उथल पुथल होती रहती थी।
4: एक मिनट भाई वसुधा।
3: हाँ।
4: अब तो भूख के मारे हमारे पेट में भी उथल पुथल हो रही है।
1: हाँ मम्मी, और नाश्ते का समय भी तो हो गया है।
0: मानव, घड़ी देखकर खाते पीते हो क्या?
3: नहीं बेटी, वो तो नाश्ता लगाने की याद दिला रहा है, वैसे भी उसके खाने का कोई टाइम है क्या? चलो मैं अभी कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ।
1: वैसे आज नाश्ते में क्या बना होगा?
2: अरे आ तो रहा है, खा कर ही देख लेना।
4: लो, हाँ, तुम्हारी मम्मी नाश्ता ले भी आई।
3: ये लो।
4: खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई।
3: क्या बना है आज?
1: भाई वाह, चावल और परदार पराठे।
2: मम्मी क्या खुशबू है, मजा आ गया। और पापा, पराठे देखकर मुझे पृथ्वी के विकास की एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान आई।
0: कौन सी बात भैया?
2: तुम्हें तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी भी अलग अलग परतों में बटी हुई है, जानती हो ना?
0: हाँ भैया, मैंने पढ़ा तो था कि पृथ्वी में मुख्यतः चार परतें हैं। हाँ,
1: चार परतें? अरे मम्मी भी तो परतों वाले पराठे बनाती है।
4: हाँ, जो कि है ना,
2: जो कि बहुत बहुत ही टेस्टी होते हैं। मानव, देखा जाए तो ये धरती भी हम सब की माँ है, जिसने हमें पाला पोसा है।
4: और रही धरती की परतों की बात, तो हाँ, हमारी शुरुआती गर्म धधकती धरती जब ठंडी होनी शुरू हुई तो उसमें धीरे धीरे चार परतें बनी।
1: मतलब पृथ्वी की परतें उसके जन्म के बाद बनी?
2: हाँ मानव, पृथ्वी के जन्म के बाद पृथ्वी में उपस्थित भारी पदार्थ इसके केंद्र की ओर और हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए।
4: और बच्चों, इस प्रकार पृथ्वी के जन्म के करीब 10 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपटल का निर्माण हुआ।
1: भूपटल के अलावा अन्य तीन परतें भी तो हैं।
3: इन परतों के नाम तो मुझे भी पता है।
4: हाँ?
3: दूसरी परत को प्रवार यानी मेंटल कहते हैं, और तीसरी और चौथी परतें बाहरी कोर और अंदरूनी कोर कहलाती हैं।
1: अरे वाह मम्मी।
4: थैंक यू।
2: पापा, मैं मम्मी को वेरी इंटेलिजेंट।
4: कोई बात नहीं।
2: तो भाई, इस प्रकार पृथ्वी की चार परतें हुई, भूपटल, मेंटल और बाहरी और अंदरूनी कोर।
4: चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि पराठे के बहाने मानव पृथ्वी की परतों के बारे में भी जान गया।
0: पापा, ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई।
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन आज तो मैं पूरे दाम वसूल करूंगा।
3: दाम? क्या मतलब है मानव?
1: अरे मम्मी, मतलब यही कि मुझे पृथ्वी के विकास के बारे में कुछ और भी जानना है।
4: हाँ मानव, वैसे भी आज तो मैं भी घर पर ही हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पापा, क्या धरती आरंभ से ही इतनी सुंदर थी?
0: मानव, पृथ्वी तुझ जैसी जल्दबाज नहीं है।
1: अच्छा?
0: वो तो धीरे धीरे विकास के दौर से गुजरती हुई आज अपने इस स्वरूप में पहुंची है।
4: और बच्चों, जीवन के लिए आवश्यक माने गए हवा और पानी जैसे तत्व भी एक समय बाद ही धरती पर आए।
2: बिल्कुल सही पापा, क्या बात है।
4: थैंक यू।
2: और धरती के आरंभ में तो यहाँ वायुमंडल तक नहीं था।
1: अच्छा, तब तो उस समय हमारी पृथ्वी पर कहीं भी जीवन नहीं रहा होगा ना?
4: अब बेटा, जीवन तो तब होगा ना जब जीवन के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध हो।
1: क्या मतलब पापा?
2: मतलब साफ है मानव, पृथ्वी के जन्म के समय ना तो यहाँ ऑक्सीजन थी और ना ही पानी।
4: हाँ।
0: मम्मी, किचन से कोई आपको बुला रहा है, जाइए।
3: मैं तो तुम्हारी बातों में भूल ही गई थी कि मैंने गैस पर दाल पकने को रखी है। अब अच्छा बच्चों, मैं किचन में चली, तुम अपनी बातें जारी रखो।
4: चलो, इसी बहाने हमें भी एक बात याद आ गई।
2: वो क्या पापा?
4: अब मानव, हमारी पृथ्वी भी आरंभिक समय में प्रेशर कुकर की भांति गर्म थी।
1: अच्छा?
4: हाँ, जिसमें से आरंभिक काल में गर्म और कुछ विषैली गैसें लगातार धरती के अंदर से बाहर निकल रही थी।
2: हाँ मानव, धरती के विकास के आरंभिक वर्षों में ज्वालामुखियों और अन्य प्राकृतिक क्रियाओं से धरती की अंदरूनी गर्मी बाहर आती रहती थी।
4: बिल्कुल।
1: तो क्या उस समय भी ज्वालामुखी थे?
0: मानव, ज्वालामुखी तो पृथ्वी के जन्म के समय से ही अस्तित्व में है।
4: और बच्चों, इस प्रकार पृथ्वी के जन्म के कुछ वर्षों तक यहाँ जहरीली गैसों और ज्वालामुखियों की ही भरमार थी।
2: और आरंभिक समय में ज्वालामुखियों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रहों, चट्टानों और अन्य पदार्थों की बरसात के चलते धरती से गैसीय पदार्थ लगातार बाहर आते रहे।
4: वेरी गुड
1: पापा। उन गैसीय पदार्थों में ऑक्सीजन भी तो रही होगी ना?
4: नहीं नहीं नहीं मानव, उस समय आरंभिक समय में पृथ्वी पर कहीं भी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं थी।
1: अच्छा।
2: और आरंभिक समय में अत्यधिक गर्मी और सौर पवनों के कारण धरती का वायुमंडल भी स्थिर अवस्था में नहीं था उस समय अधिकतर गैसें अंतरिक्ष में चली जाती थी।
1: तो फिर धरती पर वायुमंडल कैसे बना?
0: मानव तुझे बहुत जल्दी रहती है, पूरी बात सुने बगैर ही बीच में काट देता है।
1: अच्छा बाबा, अब मैं पूरी बात सुनकर ही बोलूं।
2: हाँ मानव, पूरी बात सुनकर ही बोलना। धरती के ठंडा होने पर ही यहाँ वायुमंडल स्थिर हो पाया।
4: और बच्चों, इस क्रिया में बारिश की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी।
2: हाँ, पृथ्वी के ठंडा होने पर यहाँ उपस्थित गैसीय पदार्थों के संघनन से बादल बने और फिर ये बादल ठंडे होकर खूब बरसे।
4: और आरंभ में तो धरती की गर्मी के कारण कहीं कहीं बारिश का पानी शीघ्र ही वाष्प बनकर उड़ गया।
0: लेकिन मेरी टीचर ने बताया था कि धरती पर पहली बारिश कई वर्षों तक रही।
4: सही बोला है उसने।
1: फिर तो कई जगह बाढ़ आने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ होगा, है ना?
0: अरे बुद्धू, उस समय धरती पर ना तो कोई जीवन था और ना ही कोई संपत्ति।
4: हाँ बिल्कुल। अरे मानव, पृथ्वी पर तो जीवन बहुत बाद में आया। अरे अभी तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार हो रहा था और ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही थी।
1: पापा चलो ये तो मान लिया कि धरती पर हुई पहली मूसलाधार बारिश से बाढ़ नहीं आई होगी, लेकिन उस बारिश से सारी नदियाँ और महासागर तो लबालब भर गए।
2: अरे मानव, आज जिन महासागरों का अस्तित्व है उनका तो उस समय नामो निशान तक नहीं था।
1: तो क्या पृथ्वी के जन्म के समय यहाँ महासागर नहीं थे?
0: अरे मानव, जब तुझे पहले बताया कि पृथ्वी के आरंभिक काल में ये बहुत गर्म थी और यहाँ पानी भी नहीं था, तब उस समय महासागर की तो बात ही नहीं उठती।
2: पापा आप कह ही दो, इतनी अच्छी बात करी दी सृष्टि ने तो।
4: जैसा पिता वैसी पुत्री।
0: पापा।
4: लेकिन मानव, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर वर्षों तक होने वाली पहली मूसलाधार बारिश से, जानते हो, धरती की सतह पर 6 मीटर ऊपर तक पानी भर गया था।
1: 6 मीटर?
4: हाँ।
1: एक तो वो दिन थे जब चारों ओर पानी ही पानी था और एक ये दिन है जहाँ जाओ वहीं पानी की समस्या।
0: लेकिन तब पानी का अंधाधुंध दोहन करने वाला मानव कहाँ था?
1: क्या दीदी, आप तो हमेशा मेरी टांग खींचती रहती है।
2: मानव, नहीं नहीं सृष्टि, तेरी नहीं बल्कि वो तो इंसानों की बात कर रही है।
4: और रही मानव टांग खींचने वाली बात, तो ये तो तू भी जानता है कि सृष्टि तुझे दिल से बहुत प्यार करती है। बेटा
2: सृष्टि करती है ना?
1: हाँ, बोलो बोलो।
2: ये तो पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं।
4: मैं झूठ कब कहता?
2: मैंने कई बार देखा है पापा कि सृष्टि कितनी बार अपने हिस्से की मिठाई या चॉकलेट भी मानव को खाने को दे देती है।
1: ये तो है भैया, माँ प्रेम का सागर है तो मेरी सृष्टि दीदी भी नदी से कम नहीं है।
0: थैंक यू भैया, हमारी गाड़ी भी तो महासागरों पर आकर अटक गई है।
4: तो बच्चों, ये तो तुम लोगों को पता लग ही गया कि धरती के जन्म के समय यहाँ न महासागर थे और न ही महाद्वीप।
2: महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण तो पृथ्वी के विकास के दौरान हुआ।
1: तो क्या महासागर और महाद्वीप साथ साथ बने?
0: भैया मैंने पढ़ा था कि महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों की गति से हुआ है।
1: हैं? पृथ्वी की प्लेटें? ये क्या चीज है?
4: अरे मानव, ये वो चाय वाली प्लेटें नहीं है। मानव, पृथ्वी की बाहरी परत यानी भूपटल विभिन्न विशाल चट्टानों से मिलकर बनी है और धरती की इन विशाल चट्टानों को प्लेटें कहते हैं।
2: और सबसे पहले महान जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इन प्लेटों के बारे में प्लेट विवर्तनिकी नामक सिद्धांत में विस्तार से बताया।
4: वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
2: मेरे लिए भी कही दो आप।
4: लाइक फादर लाइक सन। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार धरती की सबसे बाहरी सतह करीब 1 दर्जन छोटी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है।
1: लेकिन पापा, इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ?
2: मानव, इन प्लेटों का निर्माण पृथ्वी की हलचल के कारण धीरे धीरे होता रहा।
1: ओ,
0: मतलब पृथ्वी की इन प्लेटों का निर्माण भी पृथ्वी की विकास प्रक्रिया का ही एक अंग था।
4: एग्जैक्टली। और ये प्लेटें अपने निर्माण के समय से ही गतिमान अवस्था में है।
1: अच्छा, तो इन प्लेटों की गति से ही आगे चलकर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा।
4: वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा।
2: महासागर और महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया को विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है।
4: और हाँ बच्चों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा न केवल महासागर और महाद्वीपों की बल्कि पर्वतों और खाइयों के निर्माण प्रक्रिया भी समझाई जा सकती है।
1: वो कैसे पापा?
4: वो ऐसे कि प्लेटों की आपसी टकराहट और इनमें संकुचन के कारण ही पर्वतों और खाड़ियों का निर्माण होता है।
2: जैसे करीब 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य हुई टकराहट और इसके परिणाम स्वरूप विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कौन से पर्वत?
1: आप बताओ ना।
2: तुम बताओ ना।
1: भैया बताओ ना।
2: यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ।
1: पापा, क्या महाद्वीप भी इसी प्रकार बने थे?
4: हाँ बेटा, लेकिन महाद्वीपों के निर्माण में उनमें लगातार होने वाले फैलाव की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
2: महासागर और महाद्वीपों के फैलाव को महाद्वीपीय विसरण के सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है।
4: बिल्कुल ठीक। और बच्चों, महाद्वीपीय विसरण का सिद्धांत पृथ्वी के विकास के दौरान धीरे धीरे बनने वाले महासागर और महाद्वीपों के बारे में ही है।
2: इस सिद्धांत के अनुसार, पापा बता देना अगर गलत हो तो,
4: हाँ।
2: इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में धरती पर पांजिया नामक एक ही अति विशाल महाद्वीप था।
4: बिल्कुल सही हो।
2: थैंक यू पापा।
1: पांजिया महाद्वीप के बनने तक तो कोई महासागर भी अस्तित्व में आ चुका होगा ना?
4: हाँ मानो, उस काल में पेंथेलासा नामक अति विशाल महासागर था।
1: तो पापा, आज ये महासागर और महाद्वीप कहाँ गए?
2: मानव, ये महासागर और महाद्वीप गए तो कहीं नहीं, बस समय के साथ साथ इनका रूप बदलता रहा।
4: जैसे करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया महाद्वीप 2 हिस्सों में टूटकर एक दूसरे से दूर जाने लगा था।
2: और पेंजिया महाद्वीप के गोंडवाना लैंड और लॉरेशिस कहलाने वाले ये दो हिस्से टेथिस महासागर द्वारा एक दूसरे से अलग हो गए।
4: बिल्कुल।
1: भैया, क्या वर्तमान में भी इन हिस्सों को पहचाना जा सकता
2: हाँ,
1: है?
2: हाँ भाई, क्यों नहीं। तब का गोंडवाना लैंड आज के अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का ही पुराना रूप है।
1: ओ, तो क्या तब से लेके अब तक ये महाद्वीप लगातार गति कर रहे हैं?
4: मानव, गति तो कर रहे हैं, लेकिन महाद्वीपों की गति दर हमारे नाखूनों के बढ़ने जितनी है।
1: मतलब?
4: मतलब कि करीब 1 इंच प्रति वर्ष।
0: तभी तो धरती लाखों करोड़ों वर्षों के बाद अपने इस रूप में पहुंची है।
4: बिल्कुल सही।
2: इस प्रकार धरती की भूपटल परत की प्लेटों के फैलाव से आज के महासागरों और महाद्वीपों की रचना हुई। समझ गई ना?
1: लेकिन भैया, आपने ये नहीं बताया कि धरती पर पहला जीव कब जन्मा था?
2: मानव, धरती पर पहला जीव करीब, पापा कुछ याद है?
4: 3.5 अरब वर्ष पहले।
2: हाँ, 3.5 अरब वर्ष पहले पानी में जन्मा था।
1: पानी में?
4: हाँ बेटे, उस समय धरती पर ओजोन परत का निर्माण तो हुआ नहीं था, और शायद इसीलिए आरंभिक जीव अपने को सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों, तुम समझोगे नहीं शायद, तुमको अंग्रेजी में बताता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता हुआ जल के अंदर विकसित हुआ।
1: अच्छा। लेकिन पापा, आरंभिक जीवन पानी में ही क्यों पनपा?
2: सोचो भाई मानव।
1: देखो ना,
2: इतने इंटेलिजेंट है।
4: ठीक है, तुम बताओ।
2: अच्छा चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज गहरे पानी में अधिक प्रभावी नहीं होती, इसीलिए आरंभिक जीव पानी में ही उत्पन्न हुआ।
1: ओ अच्छा। पानी की ये विशिष्टता सुनकर मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ। ठीक है
4: मानव, जरा मेरे लिए भी ठंडा पानी लेते आना।
2: और मेरे लिए भी। पापा, ठंडे पानी से याद आया कि हमारी धरती की विकास यात्रा के दौरान अनेक बार लाखों करोड़ों वर्ष तक यहाँ हिमयुग रहा।
4: बिल्कुल सही बात तुमने बोली।
1: ये ना पानी।
4: ला भाई, तू पानी पिला, काम भी कभी कभी करता है।
1: हिमयुग?
2: हाँ हिमयुग।
1: तब तो कितना अच्छा मौसम होता होगा ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चाहे जितनी मर्जी खूब खाओ और कोई पैसा देने की कोई चिंता ही नहीं होती।
0: लेकिन मानव, पैसे की बात तो छोड़ो, तब तो धरती पर हमारा ही अस्तित्व नहीं था।
4: और होता भी तो हिम युग के दौरान जैसे हजारों प्रजातियां विलुप्त हुईं, उसी प्रकार इंसान भी इतनी अधिक ठंड का सामना नहीं कर पाने के कारण समाप्त हो गए होते।
2: हाँ मानव, इस प्रकार धरती से एक साथ हजारों प्रजातियों के समाप्त होने की घटना व्यापक विनाश या मास एक्सटिंक्शन कहलाती है, समझे?
1: तो

0: धरती पर व्यापक विनाश की घटनाएं भी होती रही हैं।
1: तो क्या समझता है मानव, धरती इतनी आसानी से सुंदर और जीवन को आश्रय देने वाली बनी है?
2: हाँ मानव, धरती तो लाखों करोड़ों वर्ष की विकास यात्रा के बाद आज इस रूप में दिखाई दे रही है।
1: धरती पर उल्कापात, क्षुद्र ग्रहों की बमबारी जैसी आकाशीय घटनाओं और हिमयुग के दौरान होने वाली व्यापक विनाश की घटना से यहाँ व्यापक परिवर्तन होते रहे हैं।
2: और इस तरह अनेक परिवर्तनों को सहते हुए हमारी धरती आज जीवन को आश्रय दिए हुए है।
3: अरे बच्चों, हमने तो बातों ही बातों में पृथ्वी के जन्म से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक के सफर के बारे में जान लिया।
2: पापा आपने कितना सब कुछ बताया।
3: मैंने नहीं, तुमने भी बताया।
0: नहीं बताया।
3: लेकिन क्या बात है कि अभी तक तुम्हारी मम्मी का खाना नहीं बना।
4: अरे कौन कह रहा है खाना नहीं बना, बस अब तो खाने वालों का इंतजार है।
3: अरे भाई, हम भी तो तैयार ही बैठे हैं।
0: हम भी।
1: आहा, खाने की खुशबू से तो मुंह में पानी आ जाता है सच्ची। अरे मानव, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं मम्मी, वो गर्मा गर्म दाल से ना मुंह जल गया मेरा।
1: मम्मी, मानव की जल्दी की आदत हमेशा इसी का नुकसान करती है।
3: अरे मानव, खाने में भी जल्दी। अभी तक तूने धरती के धीरे धीरे विकास के बारे में जानकर भी कुछ सीख नहीं लिया।
0: अच्छा पापा, अब से तो मैंने कान पकड़ लिए कि अब कभी भी जल्दी नहीं करूंगा।
3: भाई, जिस तरह हमारी पृथ्वी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ी और फिर लंबे समय के बाद यहाँ जीवन पनपा, उसी तरह अगर मानव भी जल्दबाजी की आदत छोड़ समझदारी से काम करता रहेगा तो धरती और मानव सदा मुस्कुराते रहेंगे।
5: आलेख एवं अनुसंधान नवनीत कुमार गुप्ता का था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता राजीव दुबे और प्रस्तुति सहायक संदीप चिकारा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, लालिमा अनेजा, रिदिमा बग्गा, समीर ठुकराल और मेघा शर्मा।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अरे कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक मेडिकल स्टोर झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।

0: हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग

कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रेक
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी

0: दिमागी बुखार से बची तो बेगम।
1: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
5: Dear Kiran, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है। पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: मुकेश, ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, I'm Arun Vijay. You're listening to Suno Sharda at 90.8 FM.
5: Song credits, singers Neha Kakkar, Romy, Arun and Ika, recreated Tanishq Bagchi, lyrics Shabbir Ahmed, only on Tips Official. So let's enjoy it, only on Suno Sharda 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
1: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
0: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
1: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
0: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
1: पूरी बाह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहनें।
0: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
1: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
0: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
1: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
0: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं।
1: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें, जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
0: याद रखना, बुखार में देरी
1: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
0: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पून, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
2: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
3: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
2: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
3: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
2: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
3: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
2: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
3: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
2: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
3: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
2: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा, और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है, और इसे कैसे देखते हैं आप?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती, और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो, रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती हैं, तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.